0: चेतन गुरे रोतिच
1: लगाले इंची पर इज्जत तू
0: को डायरेक्ट रोतिच रोतिच मिस्टर रोतिच रोतिच रोतिच मैले नै नै न गाई मान्छे त नि गाई नै अचेङ भएर चिता गए नि चितु स्टार 292 हाश स्टार 292 हाश स्टार 292 हाश मोङ लाबुला गाई मोङ न्यासा गाई Star 292 hash. Pugusin number 6.